सतगुरु साहब जी ने बेअंत बेअंत कृपा कीती है। सोदा रहरा साहब जी की दात बख्शिश कीती। साध संगत जी, अज अठवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा है। आप सबना नू बहुत बहुत बधाई होवे। 25 अगस्त तो 30 अगस्त तक 6 दिन रागी भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी उन्होंने कीर्तन की हाजरी भरनी है। गुरबाणी पाठ बहुत 7:30 to 9 चल रहा है। इस महीने के अखीर 30 अगस्त को पाठ बोध समागम के भोग पा दिते जाणगे। बाहर बाबा बकाला साहब दिया संगतां वालों लंगर सजाए जा रहे ने, आज भी सजाए जाणगे बाहर और कल भी ते परसों नूं भी 3 दिन। हुण बहुत ही सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र दरबार दे कीर्तनीय सिंह रागी भाई गुरजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब उन्हां तों आरती अमृत गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करदे हां।

वार्ता जो सारी आन के सुनाऊं दे आ, वार्ता जो सारी आन के सुनाऊं दे आ, जो सानू फकीरा खान जी बुलाऊं दे आ, जो सानू फकीरा खान

योग गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चावर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार कृपा मेहरहमत दा सदका सतगुरां दे हजूर सुंदर दीवान सजे हन सजे दीवाना अंदर आप संगतां रब्बी बाणी तुरकी बाणी अकाली बाणी दे पाठ बोध कार सुन रहे हो। सात संगत जी गरीब नवाज जी ने महान तरस कीता है सानू कलयुगी जीवां नू सुभाग समा बख्शिया है। आओ अपने स्वासां नू सफलियां करन हित मन चित बिरती नू एकाग्र करदे होए धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा नाल जुड़ के अपना जीवन सफल करन दा जतन करिए। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिया दी पावन बाणी हुण तक 1048 अंक तक आपां पढ़ी सुनी है। 1048 अंक दे उपर मारू राग दे विच सतगुरु तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जिया दी पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। मारू महला तीजा सच सा लाही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कै चीर है। इथों सतगुरु सचे पातशाह जी कृपा करके बख्शिश कर रहे हन। आओ प्रेम सहित श्रद्धा सहित सरवण करिए जी।

किया अकारा, गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवै सो सच बूझै, शब्द सच्चै सुख ताहा हे। गुरमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा हे। गुरमुख नाम

सो जन त्रापै अनदिन सेवह सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ माहा हे अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए मन हठ कर्म फिर जोनी।

लख कोटि जे कर्म कमाए गुर किरपा ते कट अंतर वसया सब दे सच सा लाहा है से जन मिले तुर आप मिलाए साची बाणी शब्द सुहाए नानक जन गुण गावे नित साचे गुण गावे गुणी समाहा है मारू महला तीजा निचल एक सदा सच सोई पूरे गुरते सोजी होई हर रस पीने सदा त्यायन गुरमत सील सन्नाहा है अंदर रंग सदा सचियारा गुर कै शब्द हर नाम प्यारा नौनिध नाम वस्या कट अंतर छोड़िया माया का लाहा है रैयत राजे दुरमत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक त्यायन सदा सुख पायन निचल राज तिनाहा है आवन जाना रखे ना कोई जम्मन मरण तिसे ते होई गुरमुख साचा सदा ते आवहो गत मुक्त तिसे ते पाहा है सच संजम सत गुरु दुआरे हौमै क्रोध शब्द निवारे सत गुर सेव सदा सुख पाईए सील संतोख सब ताहा है हौमै मोह उपजै संसारा सब जग बिन सह नाम विसारा बिन सत गुर सेवे नाम ना पाईए नाम सच्चा जग लाहा है सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कार्ज सच नाम सुहेला बिन शब्द कार्ज केहा है खिन मह हसै खिन मह रोवै दूजी दुरमत कारज ना होवै संजोग विजोग करतै लिख पाए कीर्तना चलै चलाहा है जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए हर स्यो सद ही रहै समाए गुर किरपा ते मिलै वड्याई हौमै रोग ना ताहा है रस कस खाए पिंड वधाए भेख करै गुर शब्द ना कमाए अंतर रोग महा दुख भारी बिस्टा माहे समा है वेद पढ़ है पढ़ बाद वखाण है घट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है गुरमुख होवै सो तत् बिलोवै रसना हर रस ताहा है।

काया कंचन कोट अपारा, जिस विच रव्या शब्द अपारा, गुरमुख गावै सदा गुण साचे, मिल प्रीतम सुख पाए दा। काया हर मंदर हर आप सवारे, तिस विच हर जीओ वसै मुरारे, गुर कै शब्द वण जनवा।

मन तन धोवह शब्द विचारी अन दिन सदा रह रंग राता कर कृपा भगत कराएदा इस मन मंदर मह मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुर भेट।

नामो नाम सदा सुख दाता, नामो लाहा पाए दा। बिन नावै सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावै वधै विकारा। नाम ना सेवै क्यों सुख पाईऐ, बिन नावै दुख पाए दा। आप करे तै आप कराए, गुर प्रसादी किसै बुझाए। गुरमुख होवह से बंधन तोड़ै, मुक्ति कै घर पाए दा। गणत गणै सो जलै संसारा, सहसा मूल न चुकै विकारा। गुरमुख होवै सो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा। जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। सच नाम सा लाहे रंग राता, गुर किरपा ते सुख पाए दा। जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा। हर कै नाम तन मन शीतल होवा, सहज

जमकाल तिस नेड़ ना आवै महल सच्चै सुख पाए दा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरै भाग गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देव है सो पाए दा अंदर परगास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाए दा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अपागे चल दिया घर दर नदर न आवै जम दर बाधा दुख पाए दा बिन सतगुर से

विचार कर ले है। वो तो सिर्फ विचारा दे तल पे जी रहे है। इस वास्ते भगता ने ऐसा आख्या भी है, भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस न परसे। श्री कबीर जी महाराज दावे ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बात नहीं असमान गिरावे, ऐसे लोगन सो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही। ए भगत विचारा दा ते सिर्फ प्रयोग कर देने, जीव लेने हिरदे दे तलते, भावना दे तलते, और जब भावना करके प्रभु नाल जुड़ देने, तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने, जो ज्ञान फुटदा है, वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ा दे चों कोई झरना वग तुर है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने, ज्ञान कितना महान है, उना दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है। आम गाथा है और ओ भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया, नामदेव नु आख सुनाया। नामदेव नु सारी गल सुना दिती, ठाकुर दी सेवा करी, घर विच मूर्तियां रखियां सन, ते नामदेव नु कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है, तू ठाकरा नु इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है, पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है ते ठाकरा नु इशनान कराणा है। बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने, बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पाणी है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नु पिलाना है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी, चूंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है, तो नामदेव नु कह दिता है जितने चिर तक मैं नाम आ, ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच, गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए ने, गागर खूब मांझी है, इशनान कीता है, गागर नू भरे है, ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उना ते पै गई, कुछ कछुए सन उना ते पै गए, आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया, आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक, ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लख जीव जल में होते, बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देश प्रभु दा एक नाम बीठल भी है, उसे दाई आप प्रयोग कर देने, बीठल नाम दा एक मंदिर भी है, बीठल मंदिर पंडरपुर देश, और वो तीर्थ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ बीठल दस मैं की करा, मैं पानी भरे है, गागर मांझी है, तेनू इशनान कराना है, पर करा की पानी पवित्र नहीं है, क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे च ने, ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने, जन्म उना दा पानी दे च, जीवन उना दा पानी दे च, मरण उना दा पानी दे च, सारी क्रिया पानी दे च, और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च है। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जोनिया ने, जेदे चो 42 लख जल दे च ने, 21 लख थल जंतु ने, और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है, पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने, जद जीवन पानी दे च है, जन्म पानी दे च है, मरण पानी दे च है, ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा, ये ते अपवित्र है। हे प्रभु, मैं इस जल दा तेनू इशनान नहीं कराना, खाली गागर लेके आ गए, और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है।

गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आए अनेक भगत जिन्हां विचों श्री जयदेव जी महाराज दा अपना एक खास स्थान है। अनंत भगतां दी बाणी अनंत भाषावां विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच दर्ज है, क्योंकि भगत देश दे वख-वख प्रांतां नाल संबंध रखदे सन। श्री जयदेव जी महाराज बंगाल दे केंद्री नामक पिंड विच जन्मे, जिला भीम बेहरू सी, और आप ठेठ बंगला भाषा विच ही माहिर सन। विद्या आपने संस्कार चूंके ब्राह्मणा दे सन संस्कृत दी हासिल कीती और संस्कृत दे महान पंडित बने। समस्त देश विच आपने भक्ति भाव दियां लहरां छड़ियां। आप ग्रस्ती सन, आप दी पत्नी दा नाम पद्मावती सी। समस्त तीर्थां ते रटन करदे आया, प्रभु भक्ति दे गीत गांदे आया, लोकाई नू रब नाल जोड़दे रहे। चूंकि आप बंगाल दे वसनीक सन, ते बंगाल दे लोकी गीत संगीत नाल बहुत प्यार रखते ने। विरासत चो मिलिया सी गीत ते संगीत। आप दा एक महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ दा नाम भी है।

लिखण शक्ति कुंद होंदी गई। जदके पंडरपुर दे महाराजा ने आले दुआले दी तमाम संगतां नूं भगत प्रेमियां नूं यह कहला भेजा सी कि पूर्णमाशी वाले दिन बिठल दे मंदर देच गीत गोविंद नाम दे ग्रंथ दा प्रकाश होवेगा और इस दे गीत जो भगती रस नाल भरे हुए ने संगतां नूं भगवत प्रेमियां नूं सुनाए जाणगे। पूर्णमाशी विच सिर्फ दो दिन रह गए, गीत गोविंद दे भी सिर्फ दो छंद रह गए, लेकिन आज सारा दिन मेहनत करके आप लिखण दी कोशिश करदे रहे, लेकिन जयदेव दे दिमाग विचों कोई गीत दी लैन ना आई ते कलम लिखण विच असमर्थ हुई। भाई साहब भाई गुरदास जी इस प्रसंग नूं अपने पौणी विच इंज कलमबंद करदे ने, प्रेम भगत जयदेव कर गीत गोविंद सहज धुन गावे, लीला चलत वखाण दा अंतर जामी ठाकुर भावे, पर अखड़ इक नावड़ो बन पुस्तक संदया कर आवे, रोज निता प्रति अमृत वेले उठ के ग्रंथ नू नाल ले जांदे सन, नदी तट ते इशनान करन तो बाद अपने रोजमर्रा दे नितनेम तो फारग होके लिखदे सन, और जद काफी लिख लेंदे सन ते जद थक जांदे सन ता आप इस गीत गोविंद नाम ग्रंथ नू सिर ते चुक के कर लिया हुंदे सन और रोजमर्रा दे कर्म विच मशहूल हुंदे सन। लेकिन अज निराश लौटे, अज पंक्ति नहीं बनी, गीत गोविंद नू संपूर्ण करना है पर दिन भी सिर्फ एक रह गया और गीत गोविंद विच सिर्फ एक दो पंक्तियां ही रह गई जो श्री जयदेव दे दिमाग विच उभरदियां ने और कलम लिखण विच असमर्थ है। ऐसी ये कोई गैबी लीला वर्ती निराश होके जद घर लौटे ता आपने पतिवर्ता सुपत्नी पद्मावती ने पूछया कारण, ता जद सारा कारण दसया तो पति दे दुख विच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जद कोई महान दार्शनिक महान कवि किसे उलझन विच फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं आता या उसके दिमाग विचों गीत दियां लहरां नहीं निकलदियां तो जिहड़ियां उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होता है ये वह कवि ही जानता है, ये वही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंताकर मन नाल रात नूं सौ गए। अज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं, तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो, रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उनू निभाओ, प्रभु भक्ति करो नितनेम करो, फिर इस ग्रंथ नू लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे, आप रहमत करनगे। किन्ने ने पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने, सोचदे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे पर कुछ उभर दी दिखाई नहीं देंदी। आज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बनिया होया है जिहदे च कोई चमकदा होया मामूली जिहा तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहिंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ, भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे, जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां।

0: सुनहरी स्याही देच लिखिया, जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही देच लिखे। लिखदे होया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए। इशनान नहीं कीता, नितनेम नहीं कीता, बंदगी नहीं कीती, तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन, कहन लगे पंक्ति फुर गई सी, लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया, ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति। पद्मावती भोजन बनाने दे चलीन, इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए। गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलापदे हैं, घर विच प्रवेश होंदे हैं की देखदे ने, पत्नी भोजन छक रही है। ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी, पर तू भी भुल गई, मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी, अज की हो गई, बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं, तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना, थानू बहुत खुशी हुई सी, ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है, पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया, हैं मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है? हां संपूर्ण हो गया, तुसी खुद ते कहे और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने, मैं खुद वेखिया ने। भजे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने, वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया हुईया ने। अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे, जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए, अरचजता ते रहस्य दे चलीन हो गए। एकदम आप ते सुरूर तारी होया, अरदास कीती हे त्रिभुवन धनी, हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा ते मैं आप लिख लेंदा, ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? ता कहिंदन अलहाम होया, आकाशवाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जयदेव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच एक कमी पाई, खुद लिखिया ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है, इसका करता मैं। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जाता है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जाता है। तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धनवाद दे नाल भरे जयदेव, अश्कबार हो बार बार सजदे च होए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, अज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमिया है। श्री जयदेव जी महाराज का ये गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतों की दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समोह दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण कीता होया जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं। हे मन, केवल राम नाम दा रमण कर, ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरतलीन करिए, तो उस राम दी याद तशरी कर देने, उस राम दी याद व्याख्या कर देने। इस पदे विच परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है, परमाद पुरुख वो फिर पूरे होया है। पुरुख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया व्यापक है वो पुरुख है। परमाद पुरुख मनोपिमन, मनोपमा तो रहत है, दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नु नहीं लिया सकदा। मन पूर्ण तौर ते जिसनु सोच नहीं सकदा, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा, ओनू जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, ओनू अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तों भी अगे दी कल्पना मन कर सकदा है, जबान जिथे तक कथन करदी है उथों तो भी अगे दी कल्पना मन कर सकदा है, कन जिथे तक सुन सकदे ने उस तों भी ज्यादा कल्पना मन कर सकदा है। कल्पना दी प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना दी प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना होवे, कितनी दूर दी क्यों ना होवे, कितनी गहरी क्यों ना होवे, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आउंदा, वो किसी दी कल्पना विच नहीं आउंदा। मन दी सोच तो परे, मन दी विचार तो परे, इस वास्ते आप कहंदे ने मनोपिमंग, मनो उपमा तो रहत है। परमाद पुरुख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन, वो सत चित आनंद आदिक भावां दे नाल रत आया है, वो सत है, वो चित प्रकाशमई है और वो आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देच राम दी व्याख्या इंज करदे ने, परमाद पुरुख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन, परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जांदा है, हैरान हो जांदा है, विस्माद हो जांदा है, जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके, और जिसनु चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके, फिर भी वो बच रहे, जिनु सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके, उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है, उत्थे आश्चर्यता ते रहस्य दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य विच जीवंदा है, एक कवि रहस्य विच जीवंदा है, एक संत रहस्य विच जीवंदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग का बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदा मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनु पूर्ण तौर ते सोच लिया, अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होंगी, रहस्य नहीं पैदा होंगा, विस्माद नहीं पैदा होंगा। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज दे समय च जितने कॉलेज ने, जितने विद्यालय ने, ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर कीता है, विस्माद नु खत्म जरूर कीता है। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी, रहस्य सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ये विस्माद है, अजे अबोध है, उसका बिस्मार अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कौल बिस्मार है या इन कह लो कविता का जन्म ही बिस्मार तो होंदा है, कविता का जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नूं भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नूं ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नूं भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नूं ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नूं भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपिया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर बिस्मात मंडल तारी हो जाता है, तो कवि बिस्मात विच जीवदे ने, संत बिस्मात विच जीवदे ने, भगत जयदेव जी महाराज कहंदे ने परमद भूतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है, परकृत परम ओ प्रकृति तो परे। कहंदे ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे ने, रस्ते विच एक गंदगी दा ढेर पिया, सवेर दा वक्त है, सूरज दियां किरणां उस गंदगी दे ढेर नूं छू रहियां ने। ये सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट होई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दियां किरणां गंदगी नूं छू रहियां ने, फिर भी किरणां गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां दे तू है पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने परमद भूतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करन दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां, हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जांदी है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद भूतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है परमात्मा दा नाम है उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगां चल के इसे ही पद दे श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने कि न दानोद जस सिमरण न जन्म जराद मरण भयं, नहीं आउंदा जिहदे सिमरण करन दे नाल जन्म दा दुख मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साडे देश दे ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख मरण दा दुख ते बृद्ध अवस्था दा दुख। भगत कबीर भी इस नूं मनदे ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़े कुल तन ते है पर कुछ कर नहीं सकता, दिमाग है पूर्ण तौर ते सोच नहीं सकता, हाथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर ते कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते बृद्ध अवस्था नु पूर्ण बृद्ध अवस्था नु रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना नहीं तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करदे ने रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, हरी दा जो जन है उहदे नेड़े ए जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदा। इत्थे इक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जाता है, पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान। जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदियां उमंगा हुलास दे कोई फर्क नहीं पैंदा, ओदी चेते शक्ति दे कोई फर्क नहीं पैंदा। उसके चेहरे उत्ते ताजगी बनी रहती है, उसके चेहरे उत्ते आनंद बनिया रहता है। उन्हें वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुढ़ा हो गया, यह वृद्ध हो गया, यह कमजोर हो गया है। नहीं, उसका हुलास, उसकी उमंग, उसकी तुरंग और उसकी चेते शक्ति पूर्ण तौर पर कम कर दिए, प्रभु की बंदगी का एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषा ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे दा रोग भी नहीं आंदा। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे दे फरमान कर देने, ना दरोद जस सिमरन ना जन्म जराद मरण भयं, इच्छस जमाद परा भयं जसवस सुकृत कृतन। जे तेनु इच्छा है ए बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करे, जन्म मरण तो बचे, ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर, जसवस सुकृत कृतन शुभ कर्म कर, ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। भाव परमात्मा दा जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है। इसनु तू कर, इसे एक शुभ कर्म तो अनेक शुभ कर्म जन्म लेंदे ने। अगर ये एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म वो है जब हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है, तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जब शुभ दा चिंतन किया जाता है तो हिरदा शुभ हो जाता है, ते जैसे हिरदा शुभ होता है ऐसे ही मनुख शुभ चिंतक बन जाता है। वो हर एक की शुभ कामना करता है, वो हर एक का शुभ चिंतक बनता है। पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है, शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है। कामना मैलियां होंगियां और चिंतक चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है, उसका चिंतन ओ तो कर। इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं, भवभूत भाव समभ्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं जो त्रैकाल दर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमे हुआ है, व्यापक है, भवभूत भाव समभ्यं जो हुण भी है, पहले भी सी, अगामी जो है होवेगा, जो हर समय मौजूद है, त्रैकाल दर्शी है, भवभूत भाव समभ्यं परमन प्रसन्न मिदन, जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है, जो अत्यंत परम आनंद दे चलीन है, तो उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है, यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरिदा भगत है, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है, ओदे सामने जग तुच्छ है, जोग साधना भी तुच्छ है, और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है, जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है, और जग करन वालियां तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है। जोग जग लै फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है, दान दी पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहंदे ने, गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन, जय देव आयो तस्सु फटंग भवभूत सर्वगतं। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर, और इस तरह जाप कर दें तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी, तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन देच ही संसार दे सुख ने, परमार्थ दे सुख ने, गोविंद दे सिमरन देच ही लोक सवर जांदा है, पर लोक सहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

करता पुरख निरभो निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चार युगां दा जिक्र बार बार आया। चौ युगां का हुण निबड़ा नर मनुखां नू एक निधाना। गर्ज के चारें युग एक ऐसी श्रृंखला है जो समय के खड़ी है, मनुख दे मानसिक मंडल ते विचारां ते खड़ी है। समय विच युगां दी तब्दीली ए एक मनोत पुरानी है, इन्हों मिथ भी कह सकते हैं। अस्थान दे युगां दी मनोत जैसे किसी थां ते कथा कीर्तन हो रहा है, वो जगह सच है, वो जगह बैकुंठ है। कहो कबीर कहिए काय, साध संगत बैकुंठे आए। जिथे सत्संग हो रहा है बैकुंठ है, जिथे सत्संग हो रहा है सचखंड है, जिथे सत्संग हो रहा है सतयुग है। एक अस्थान दे पर तीसरी घटना जो है मानसिक मंडल दे विज्ञानक है, सच्चाई है, एक तथ्य है।

इसे मेरा ही कलयुगी जीव है। ये ठीक है, सनातन मत देखी और गुरमत दे अंदर भी युगों का शरीर रूप भी मन लिया गया है। जैसे कहानियां आदियां ने, कबीर नू कलयुग मिलिया, गुरु नानक नू कलयुग मिले, मरदाने नू कलयुग मिलिया, फलानी थां ते कलयुग प्रगट होया। कलयुग नू एक व्यक्ति मन लेना ये मिथ है, पर पुराना एक ढंग से बयान करन दा, जैसे बुराइयां नू ही शैतान आखिया जांदा है, पर इस्लाम दे शैतान दा एक वजूद मन लिया गया, उसका एक आकार मन लिया गया, शैतान नू एक व्यक्ति मन लिया गया। दरअसल शैतानियत, शैतान इति बुराइयां, इति जो औगण है। इसी तरीके दे नाल देव बिरतियां, पवित्र बिरतियां, प्रकाशमई बिरतियां जिस दे अंदर चल दिया ने वही देवता, और जो औगुण हारा है, अचेत ते अंधकार विच जी रहा है, वही राक्षस है। वास्तविक एक सच्चाई है, देवता होना, राक्षस होना, शैतान होना, भगवान होना, ये मनुख दे मन ते आधारित है। एक कोई समय कोई शैतान हो सकता है, कोई भगवान का रूप हो सकता है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, एक कोई व्यक्ति सवेरे से सतयुग दे जी रहा सी, शाम नू कलयुग दे जी रहा, दोपहर नू त्रेते दे जी रहा सी, रात नू द्वापर दे जी रहा सी। मानसिक अवस्थावां ने किस तरह ने धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी ते आधारित, इसनों मैं बयान करन लगा। नानक मेरे शरीर का एक रथ वाओ, जुग जुग फेर वटाइए, ज्ञानी बुझे ताए। युग युग दे समय समय दे जीवन चेतना शरीर वक वक धारण कर दी रही है, जीवन दे लक्ष्य बदल दे रहे ने, जीवन दे साधन बदल दे रहे ने। लक्ष्य बदल जाए, साधन बदल जान, युग बदल जाता है। युग दी तब्दीली इस्ते खड़ी है कि मनुख दे जीवन दा लक्ष्य बदल गया, युग बदल गया, लक्ष्य दी प्राप्ति दे साधन बदल गए, युग बदल गया। समा ते लाजमी लगेगा, वक्त ते लाजमी लगेगा। इस वास्ते जिना जिना ने समय विच भी युगां दी गिनती की थी, लेकिन आधार ते मनुख दा मन ही बनाना पड़ेगा। ये ठीक है, मनुख दे मन नू बदल दें, लक्ष्य दे बदल दें, साधन दे बदल दें, समा ते लगता है, वक्त ते लगता है। तो जिना जिना ने समय दे आधार ते युगां दी वंड कीती है, उन्हां दा दृष्टिकोण बैरूनी है, पर वास्तविक ते ए ही है कि बहुगिणती दे मनुख दे जीवन दा लक्ष्य जद बदल जांदा है, साधन लक्ष्य दी प्राप्ति दे बदल जांदे ने, युग बदल जांदा है। युगां दे अगर हुण गिनती करिए तो चलो ऊपर तो लइए, प्रथम सतयुग। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जुग जुग फेर वटाइए, यानी बुझे था कोई ज्ञानवान है

सतगुरु अज आप जी दे चरणा च काम बिरती दी साकत बिरती दी व्याख्या कीती। असल च मेरी अपनी बिरती है, तुसी बख्श दियो किसे दे हिरदे नू कोई ठेस पहुंची होवे। सचमुच किसे नू टारगेट बना के नहीं, गुरु दे देनदार होवांगे जे किसे नू निशाना बना। एक फिर वैर हुंदा है ना, उत्थे फिर शब्द नहीं रहिंदा, तुकां नहीं रहिंदियां, बंदे दी गंदी बिरती हुंदी है। सतगुरु सब दा भला करे। आओ आप जितने महाराज जी दे चरणा च बैठे हो यही अरदास करिए, सतगुरु साडी बिरती बदल दे। साडे कोल कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं, हां तू बख्शिश करन ते आवे एक खिंदे विच कुछ दा कुछ कर देना बंदे। ओ बंदे जेडे सारी जिंदगी दारू पींदे रहे, सारी जिंदगी ऐब करदे रहे, जदों गुरु ने पलटा मारिया पर सब कुछ एक खिन विच छड्ड दिता। गुरु इतिहास विच भी ने, अज भी ने जी, तुसीं दरबार साहिब च, मैं दरबार साहिब दा वार वार तां जिक्र करना क्योंकि मेरी रसाई उत्थे है, सुनवाई उत्थे है। ये पातशाहां दा दरबार है। एक दिन मैं कहा सी भाई साहब ने यह नहीं लिखिया कि गुरु रामदास बैठते सन, वो कहते ने बैठा है, बैठा ये क्या ना बैठा है, थोड़ा क्या बैंदे हुंदे सन, नहीं नहीं बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जगावे, सी नहीं जगावे अमृतसर विच जोत जगावे। उन्हूं वर्तमान च मैं अर्थ करना वा, उस दरबार विच बेअंत ऐसे मिलदे ने जी जिन्हां नूं मैं ते कहना जे दरबार साहिब दे अंदर, क्योंकि साडा प्रबंध हो जाए ना जी, चलो इस बाबा जी दे वेले विच हैगा वी रहना, कल्पना कुल्पना नहीं चाहीदा। यही तो गुरु रामदास की खूबसूरती है, इन्हें निकम्मे प्रबंध विच भी किसी नूं तत्ती वाह नहीं लगन दिंदा, ये खूबसूरती कह सकने ना भी तू ही बचाई बैठा सब कुछ। हुण गर्मी आ जानी, चार चार घंटे बीबियां बिचारियां न्याणे कुछड़ चुके, कुछड़ पता ना जी, कुछड़ चुकना गोदी च लै खलोतियां रहिंदियां ने, कोई किसे कोई उत्थे इंडिया विच एक निकम्मे जे लीडर ने आना होवे ना, चलो वाहगुरु एम्बूलेंस आ जाएगी जी, डॉक्टर भेजो जी, फर्स्ट एड भेजो, बंदा भावे 100 भी इकट्ठा ना हो, इत्थे रोजाना लखां मत्थे टेकदे आ, कदी परिक्रमा च कोई फर्स्ट एड देण वास्ते नहीं बैठा होया। एक दिन दा नहीं रोज दा है, केड़ी कला वरती उत्थे, केड़ी बख्शिश वरती। बस मैं भाई साहब दी अज रचना नाल मंच सी, भाई गुरु भाई वीर सिंह लिखदे आ, मणि गवाचिया सप ज्यो दुख पावंदा। अज भी असीं गल कमरे च कर रहे सां, एक गुलदस्ता भाई साहब जी दी कोठी चो हर रोज आउंदा है अमृत वेले, ते दास तकरीबन यतन करदा है भी हर साल भाई साहब दी कुटिया च एक कथा जरूर करके आउणी। गुरु रामदास जी दे पुरब च उह जदों दरबार साहिब बैठदे सन, रोजाना उहनां दा नेम सी, चेहरा ढक के सेवा करदे हुंदे सन। उन्होंने दरबार साहब बारे नजम लिखी है, वह कहते मणि गवाचिया सप ज्यों दुख पावदा, पुत गवाचिया मां जग नहीं पावदा। सप की मणि हुंदी है जी, कई बंदिया नूं समझ कोई नहीं, यह मैं बोली एक तां वह कमेंट करने वाला कह रहे से यह कि गल्ला केड़िया मणिया हुंदियां, हुंदी मणि करोड़ा रुपये की कीमत हुंदी मणि नूं, ऐसी तुसी जिहड़े बंदिया नूं पैरालाइज हुंदा ना जी, पहली गल सामना बड़ा मुश्किल है। जे तुसी उहदी खत की तली ते मणि रखो, इको दम मणि असर करके उहदियां नाड़ां चला सकदी है, तंदुरुस्त बंदे नूं पैरालाइज कर सकदी है, इन्नी शक्ति है उहदे च, पर मिलदी बड़ी घट है। भाई साहब कहिंदे जदों उहदी गवाचदी सप गया, उह चटदा है ना मणि नूं, मणि गवाचिया सप ज्यों दुख पावदा, पुत गवाचिया मां जग नहीं पावदा। हर रस दी जद तोट पवे फकीर नूं, परलो मचे चुफेर त्यों घबरावदा, टुटी डोर जे द्वार तेरे ते आवदा। देखो जे रस टुट जाए, टुटी डोर जे द्वार तेरे ते आवदा, लहर फिरे इक वार रो मुड़ धावदा, की अगम्मी खेड इथे वरतदी, अरश उतरिया आण रसियां बचावदा। इहदे अर्थ ने कि अरशां तो परमात्मा उतर के जेड़े बंदे तोटे च आ जांदे ने सिमरन दे, परमात्मा हरिमंदर साहिब च बैठा उन्हां टुट्टियां होयां नूं रस बख्शदा पिया है।
ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੜੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਕਾਲੇ ਕਹਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲੇ ਇਹੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਕਦੀ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਗਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਚ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਚਿੱਕੜਦਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਈ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਿੱਕੜ ਚ ਡੱਡੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਕਦੀ ਨੀ ਗੁਰੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਬਗਲਾ ਕਦੀ ਨੀ ਬੈਠਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬਾਤ ਸਾਜਨ ਸੁਣੋ ਕਹੂੰ ਸਾਚ ਬਖਿਆਤ ਦਾਦਰ ਨੇ ਕਾਦਰ ਰਚਿਓ ਇਸ ਤੀਰਥ ਮੈਂ ਜਾਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਖੋ ਔਰ ਖਾਸ ਨਾ ਡਟ ਰਹੇ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ ਇਹਾਂ ਕਵੀ ਕਿਸ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਂਡ ਵਾਹ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musa baby, yeah. Mercy.

जेसु साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटे जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोबिंद
0: मन तरकी उतरै चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संतजना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर लेहु भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चित हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप तरह लोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अंत करे प्रभ गाजय
1: करके गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आये
0: कर कृपा प्रभ आप मलाये
1: मिट गए बैर भय सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण हो ही सेवक की सेव
1: आज जाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभधारी
0: नानक निवही खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊंच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊंच ताकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

सतगुरु विचार रखियो उनकर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम युग विचार है जिन सच्चे से उचित लाया। जग जीव

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन

दुर्गापुर, त्रेता तीजापुर और सतयुग चौथा बन जाएगा। और ए गिनती ठीक है, त्रेते तो मुराद तीजा, द्वापुर तो मुराद दूजा युग। कलयुग प्रथम बनी है तो सतयुग चौथा बन जाता है, सतयुग जो प्रथम बनी है तो कलयुग चौथा बन जाता है। पर जो प्रचलित गाथा है वो सतयुग त्रेता द्वापुर से कलयुग इस तरह गिनती चल रही है। पर अखरी अर्थ करांगे त्रेते दे तो तीसरा युग द्वापुर दूजा युग कल युग ये पहला युग जिस अति जी रहे, ये पहला जो लंघ गया दूजा जो उस भी पहले लंघ गया तीजा और जो उस भी पहले से चौथा। द्वापुर द्वापुर भी रूपरेखा धन रामदास जी महाराज इस तरह पेश कर रहे हैं। युग द्वापुर आया भरम भरमाया हर गोपी कान उपाय जियो तप तापन तापे जग पुण्य आरंभे अत क्रिया कर्म कमाए जियो क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया दोए पग टिके टिकाए जियो महाजग जोध बोकीने महाजग जोध बोकीने विचों में पचे पचाए जियो दीन दयाल गुर साध मिलाया मिल सतगुर मल ले जाए जियो जुग द्वापुर आया भरम भरम आया हर गोपी कान उपाय जियो। द्वापुर युग दी रूपरेखा धन रामदास जी महाराज बयान कर दें या कहते हैं जग भरम दिख पै गया बुलेखियां दिख पै गया गोपियां कान तरह तरह दिया रास लीला दे पसारियां दिख पै गया तप तापना आरंभ होई कर्म कान आरंभ होए और हंकार मनुख दा वद्दा गया समय दे गेड़ दे नाल नाल अहंकार इतना चरम सीमा ते पहुंचया महाजग युद्ध बहु की ने बड़े युद्ध हो वाकई द्वापुर देखते महाभारत दे युद्ध नाल सारा भारत ही तबाह हो गया। चोटी दे स्याणे मनुख चोटी दे दार्शनिक चोटी दे विज्ञानिक छोटी दे धार्मिक पुरुष सब नष्ट हो गए। महाभारत दे युद्ध नाल भारत दी ते रीढ़ ही टूट गई और ऐसी रीढ़ टूटी काफी लंबे समय तक वाकई ये गतिमान नहीं हो सके। द्वापर युग दी व्याख्या धर्म गुरु रामदास जी महाराज इस तरह जो है बयान कर रहे हैं बस युद्ध ही युद्ध सन हर पासे लड़ाई झगड़े ही सन और जे किधरे लड़ाई झगड़े नहीं सन ते धर्म दे फोके कर्म कांड सन या यज्ञ ते हवन सन। इस तरह द्वापर युग दे धर्म दे सिर्फ दो पैरी रह गए दान रह गया और व्यर्थ दा कर्म कांड रह गया जग रह गया। जग ते दान इन्हां दो पैरां दे धर्म टिक गया संतोख ते सत

0: करे, मैं सच बोलना है और सत्यवादी जीवन बतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहुगिणती दे चल रहा झूठ इसनु सत्यवादी नहीं रहन देगा। तप घर तप ना हो, तपीश्वर दा तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाव ले बदनामी, कल के लखन एही। जो नाम जपेगा बंदगी करेगा उनु मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया होया आख्या जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ए कल जुग दे लक्षण नहीं। महाराज कहते जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के है डरना जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कलयुग दी होर रूपरेखा बयान करदे होया महाराज कहंदे ने किसे पक्ष दा भी जो चौधरी है खुआर होवेगा, कोई भी जिम्मेवारी चुके, समाजिक आर्थिक राजनीतिक जरीलो खुआर होवेगा। और उसनों अक्सर चाकरां तो डर के रहना पड़ेगा, प्रजा तो डरदे हुए राजे जीणगे। जां सिकदारे पवे जंजीरी, तां चाकर हथों मरना। जे किधरे चौधरी बंदना दे पै जाए तो अक्सर मुलाजम दे हथों, चाकर दे हथों, नौकर दे हथों ही उसकी मौत होवेगी, सेवक दे हथों मालिक दी मौत होवेगी। इह ते सब कुछ असी देखते पाया, घर दे नौकर ही घर दे मालिक नू मार जांदे ने, घर दे नौकर ही घर नू लुट लैंदे ने। और अक्सर मालिक नौकरां तो डर डर के अपना जीवन बतीत करदे ने, परजा तो डरे हुए ने हुक्मरान। ते जो परजा तो डरे होया हुक्मरान है उह ते फिर परजा दे मुताबक ही चलेगा। अगर परजा भ्रष्ट है राजा भ्रष्ट हो जाएगा, राजा भ्रष्ट है परजा भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी बैरूनी रंगत जो कलयुग दी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान कर देने और कहन तपीश्वर तप नहीं कर सकेगा, जपीश्वर जप नहीं कर सकेगा। उच्चा आचरण धारने जिसने प्रण कीता है अपने प्रण नो निभा नहीं सकेगा। जेको सत करे सो चीजे, तप घर तप ना होई, जेको नाव ले बदनामी, कल के लखन एही। ए कल जुग दे लक्षण ने। इते होई बैरूनी रूप दे कल जुग दी द्वापुर त्रेते ते सतयुग दी व्याख्या। इसनु जो अध्यात्मक रंगत गुरु नानक देव जी महाराज ने दिती है और उसकी जो व्याख्या भाई गुरुदास ने कीती है, उस पहलू नु छुए बिना ये सारी विचारधारा अधूरी रह जाएगी। उंज भी युगां दी ए वन भारत दे ऋषि मुनिया ने ही कीती है। और ए एक प्रबल सच्चाई है कि धर्म दा बहुत गहरा बोध, मनुख दे मानसिक मंडल दा बहुत गहरा अध्ययन जो इस देश दे च होया है और किधरे भी नहीं होया। इस वास्ते बड़े गहरे ऋषि इस देश ने पैदा किते, धर्म दा बहुत वड्डा साहित्य इस देश ने पैदा किया, कितने अवतार, कितने संत, कितने महात्मा, कितने भगत इस देश ने पैदा किते, भरे होया है ये देश भक्तां नाल, संतां नाल, अवतारां नाल, गुरुआं नाल। इसनु ऐसा कह दईए कि वाइब्रेशन इस देश दी ऐसी सी, माहौल इस देश दा ऐसा सी, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, अवतारी पुरुष आ रहे सन। इस देश दी महिमा अज भी उना अवतारा करके है, अज भी उना भगतां करके है। चार युगां दे अवतारा दी रूप रेखा भट्टा दी बाणी विच इंज दर्ज है। भट्ट कहिंदे ने सत जुग तै माणियो छल्यो बल बावन भायो त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो उग्र सैन को राज अभय भगतें जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चले अटल आद पुरख फुरमायो। सतयुग दे 52 बोने अवतार त्रेते दे श्री कृष्ण रंसी द्वापर दे श्री कृष्ण यादव वंशी और कलयुग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश दे उजागर होए। समय दी रूप रेखा दे भट्ट अवतारा नूं इस तरीके दे नाल मंदे ने और समय दा बैरूनी प्रभाव जन्म साखी दे इन चित्रिया होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने बाले नूं मर्दाने नूं समझांदे ने ए युग कैसा है। जे बैठा ता आखिए बैठा 70 घट जे चलना ता आखिए छार गया सित घट। जे मैं चलदा ते कहिंदे ने ए ते सिर देते छार पा के चला गया मिट्टी पा के चला गया ते जे मैं बैठा रहा लोग कहते ने ये बस 70 बैठ के ही बैठा होया 70 मल के ही बैठा होया ये तो सिर्फ बैठा ही रहता है। जे बैठा तय आखिए बैठा 70 घट जे चलना ता आखिए छार गया सिर घट जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखिए ऐस घट ना ही मत। जे मैं बोलदा ही नहीं खामोशी धारण कर लेना तो कहिंदे ने इहदे कोल कुवत गोयाई नहीं है इहदे कोल बोलण दा ढंग नहीं है इहदे कोल अकल ही नहीं है। पर जे मैं मौका महल गल करा बातचीत करा तो कहिंदे ने ते बड़बड़ करदा पै बस बोली जांदा है बोली जांदा है। जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखिए ऐस घटना ही मत। काई गाल ना मेवनी करता ही रखे पत बस दुनिया दा कम हो गया है निंदा करने और निंदा करन लई बहाने लबने चल रहा है मनुख ले खाक उड़ा के चल रहा है बैठा है मनुख बस बैठा ही रहिंदा है बोले बड़बड़ करदा पे चुप है मूरख है गर्ज के निंदा करन दे बहाने। इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है और मनुख कदम कदम दते निंदा कर रहे है और निंदा करन दे बहाने लभदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहिंदे ने कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे निंदा दी कि हुण इसका कोई इलाज भी नहीं है। औखद सबे की तेन निंदक का दारू ना है। निंदा ऐसी जहर है ऐसी कुड़त्तन है जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल। मनमुख वसें तिस जिस तों चित ना आवै। हे प्रभु, मनुख ऐसा निंदक हो गया और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है, कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर इतनी कौड़ी नहीं, जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है, ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान कर देने, दौलक दुनिया वाजे वाज, नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। इस युग देच मन ते नारद बन गए, ते नारद दा कम की है चुगली, इधर दी उधर, उधर दी इधर। इस दौर विच मनुख दी तर्जे जिंदगी ऐसी बन गई है, महाराज कहने मनुख दा मन नारद है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। ये जत ते सत केड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा, मन ते नारदी होया पे है, मन ते चुगल बखील होया पे है, मन ते बड़ा परबल निंदक होया पे है। ए कलयुग दा प्रताप, समय दा प्रताप। ए धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर दा जिक्र पे कर देने। दरअसल गली दे कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए, तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है। मनुख स्वतंत्रता दे नाल अपना रास्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक, तो उस विच जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठिया की भीड़, इस दे चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्म कांडी और कर्म कांडिया की भीड़, इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ दा कर्म कांडी हो जाता है। और एते एक मन दा स्वभाव है कि एदे उते अक्सर प्रभाव पैंदा है भीड़ दा। मनुख कहिंदा है इतने सारे मनुख जो चल रहे ने, ते गलत किस तरह हो सकते ने। दरअसल बहु गिनती ही गलत हो सकती है। किसी समय महात्मा बुद्ध ने बड़ा कीमती कौल अपने चचेरे भरा दे सामने रखिया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आंदी। बहु गिनती ते हमेशा ही गलत होगी। भीड़ हमेशा बुरियां दी आंदी है, नेक ते बहुत थोड़े ही। गीटियां ते पत्थर आम मिल सकते ने पहाड़ा ते, हीरे ते किधर किधरे। संख ते सिपियां सागर दे तट ते भी लग पैंदिया ने, पर मोती ते किधरे किधरे ही उपलब्ध हो सकते ने। किकर ते सारी धरती दे च मिलदा है, पर चंदन दा वृक्ष ते किधरे किधरे। जितने मिकदार दे च कोयला निकलदा है पहाड़ा दी कुख दे चा, उतना सोना नहीं। तो कल युग एक कलेश भरिया युग, और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़, तो मनुख दा मन कलेशमयी हो गया। झूठिया दी भीड़ दे च झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ दे च निंदक हो गया, लोभिया दी भीड़ दे च लोभी हो गया। इस तरह दी भीड़ दे च मनुख जी रहा है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह रखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहा है, चुगलखोर हो गया। इथे जति अपना पैर केड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती जल रही है। इथे सती केड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय दी रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख दी तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग दी व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान कीती है, इन्हां शब्दां दी व्याख्या मैं पेश करन लगा। और ये आसा दीवार दा श्लोक है और भाई गुरदास जी दी एक पौड़ी जिस विच भाई गुरदास जी कहंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे तो इसनु समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलदा रहा, बार बार जन्म होंदा रहा और जन्म होंदा रहा वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलदा ही रहेगा, जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहिंदे ने मन ऐसा है या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलन लग पई और प्रार्थना दे शुकराना धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ए गेट मिट जाते ने। पर वासना ते चलती है, अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ए जन्म भी नहीं हो सकता। इति वासना बद्धा आवे जाए, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे च ए मेरा मेरू शरीर, ए महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आउंदा रहे। अक्सर पुन ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होन पुन ना होवन तो मनुख पछड़ जांदा है, पिछे मुड़ जांदा है। पर ऐसा ते कोई पापी नहीं कोई थोड़े बहुत पुन ना करदा होवे। कबीर सच कह रहे ने, पाप पुन दोए बहल बिसाए पवन पूंजी परगासियो। मनुख स्वासां दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीददा है कुछ पुन खरीददा है, तो पाप पुन बराबर होण करके मनुख दा बार बार जन्म मनुख दा ही आउंदा है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करदा है जीवन दी लालसा करके, पुन करदा है इस जीवन तो मुक्त होण वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जांदे ने तो बार बार मनुखी जन्म उपलब्ध होंदा है। तर्ज़े जिंदगी दे तौर तरीके जो बदलदे ने, इस तब्दीली नू धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस ढंग नाल बयान करदे ने मैं अर्ज कर रहे हैं।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। BC ਚੈਰੀਜ਼ 2.98 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਰੋਮਾ ਟੋਮੇਟੋਜ਼ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਧਨੀਆ ਲਵੋ 69 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਅਤੇ 800 ml ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ 3.98 ਦੀ ਬੋਟਲ।
4: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
5: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
5: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
4: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
5: ਫ੍ਰੀ ਪਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
6: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ
4: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900
2: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ

0: जीव आत्मा आजाद होंदी है उन्हों मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष परम उपलब्धि है। मोक्ष तो बिना और कोई ऐसा फल नहीं जिस दे इतना स्वाद होवे रस होवे। तो ज्यों ज्यों धर्म वधदा है त्यों त्यों मोक्ष वधदा है और ज्यों ज्यों धन वधदा है त्यों त्यों काम वधदा है। सिर्फ धन है ते धर्म नहीं, ऐसे बंदे दा कामी हो जाना अति कामी हो जाना कुदरती गल। तो जैसे जैसे घर विच धन वधे नाले धर्म भी वधे, ताई संतुलन कायम रहेगा वरना तवाजन डामाडोल हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। जितनी सीमा विच धन वधे उतनी ही सीमा विच धर्म वधे तां फिर की होवेगा, जितनी सीमा विच काम वधेगा उतनी सीमा विच मोक्ष भी वधेगा। और ये चार पदार्थ मन्ने गए ने, चार पदार्थ दे मिलदियां ही मनुख माला माल हो जांदा है। दो पदार्थ संसार दा सुख पैदा करदे ने और दो पदार्थ अध्यात्मक रस नूं जन्म देंदे ने, आत्मा दे खेड़े नूं जन्म देंदे ने, आत्मक प्रसन्नता नूं जन्म देंदे ने। इह ते ठीक है कि मनुखी तन वास्तविक तीन हस्तियां दा मजमूआ है, शरीर मन आत्मा। शरीर दा जो शरीर नाल मिलन है, पदार्थ दा जो पदार्थ नाल मिलन है, क्योंकि शरीर स्वयं एक पदार्थ है, पंच तत्तां दा पुतला है, पदार्थां दी बणतर है। पदार्थ दा जो पदार्थ नाल मेल है, शरीर दा जो शरीर नाल मेल है, इत्थों जो रस पैदा हुंदा है इसनूं काम रस कहिंदे ने। मन दा जो मन नाल मेल है, इस मेल तो जिस रस दा जन्म हुंदा है इसनूं प्रेम रस कहिंदे ने। ते आत्मा दा जो परमात्मा नाल मेल है, इस मेल तो जिस रस दा जन्म हुंदा है इसनूं भक्ति कहिंदे ने। भक्ति रस शिखर दा रस है, भक्ति रस सब तो उच्चे दा रस है। काम रस पशुआं दी दुनिया च भी है, पंछियां दी दुनिया दे च भी है, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया दे च भी है। अगर इस रस तो मनुख उच्चा नहीं उठया तो फिर पशुआं दे तल ते खड़ा है। मनुखता दे तल ते बंदा उदों पहुंच जांदा है जद प्रेम दी दुनिया च पहुंचता है। तो सिर्फ कामना दा संबंध गुरु नाल जोड़ना, यह संबंध कोई बहुत उच्चा नहीं, पर गुरु दे विचारां नाल अपने विचार जोड़ लैण, गुरु दे मन नाल अपना मन जोड़ लेना, तो दो दिलां दे जुड़दियां दो विचारां दे जुड़दियां प्यार दा जन्म हुंदा है। जिस दिन दो विचार एक हो जांदे न प्यार पैदा हुंदा है, उत्थे स्नेह दा जन्म हो जांदा है। प्रेम ते स्नेह एक बहुत वड्डी तृप्ति दे जांदी है। साहिब कहिंदे ने जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आधाए। प्रेम दे नाल तृप्ति मिलती है, लेकिन परम आनंद परम प्रसन्नता उदों ही मनुख नूं मिलती है जद आत्मा दा परमात्मा नाल मेल होवे, आत्मा दा परमात्मा नाल मिलन होवे। तो साहिब दी बाणी दा एक फरमान, प्रभु चिंतन दे नाल मनुख दी झोली चार पदार्थां नाल भर जांदी है, उन्हों धन भी मिल जांदा है, कामना दी पूर्ति भी हो जांदी है। प्रभु चिंतन दे नाल धार्मिक तौर ते जो नाम दा रस आनंद है वह भी झोली च पै जांदा है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। ए बंदे जे तेनू चार पदार्थ चाहिए ने, इन्हां पदार्थां दे नाल जे तू अपनी झोली भरना चाहना है तो सतसंग दे च आ, गुरु की शरण दे च आ। गुरु की शरण सतसंग दा रस और गुरमत दियां विचारां तेरे ही इस झोली नूं चार पदार्थां नाल भर देनगियां। ते इन्हां पदार्थां तो कोई होर उच्चा पदार्थ है नहीं। जिस वक्त धन ते कामना दी पूर्ति हो जाए संसार तो मनुख उच्चा उठदा है, सब कुछ मिल गया। ते जिस दिन धर्म ते मोक्ष मनुख नूं मिल गया उस दिन ते बंदा उस सिंघासन ते जा बैठता है जिस सिंघासन ते परमात्मा आप बैठा है। भगत कबीर कहने, अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पहचान।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. Today,
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਬੀਸੀ ਚੈਰੀਜ਼ 2.98 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਰੋਮਾ ਟੋਮੇਟੋਜ਼ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਧਨੀਆ ਲਵੋ 69 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁੱਛੀ, ਅਤੇ 800 ml ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ 3.98 ਦੀ ਬੋਟਲ।
3: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
4: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਫ੍ਰੀ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
5: 3 locations ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
3: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ @604-581-1900।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: समुंद शाह सुल्तान गिरहा से भी मार्ग

0: एक वरण वाला मनुख टुकड़िया टुकड़िया च बटे होया और अधूरा है। इस वास्ते साहबा ने नारा लाया, मनुख नु संपूर्ण करना है, मनुख नु पूर्ण रूप रेखा देनी है। और पूर्ण ए उदो होवेगा जद मस्तक दे नाल नाल इस दियां बांवां भी कम करन, इस नु पेट दी चिंता भी होवे और इस दे अंदर सेवा वाली बिरती भी पूर्ण रूप दे च जाग पवे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की इस विचारधारा का भारत ते बहुत गहरा असर होया। सदियां दी ए जिहड़ी गुलामी सी इस दे च आजादी दी रूह पैदा हुई, आजादी दे परवाने पैदा होए। गुरु नानक दी गल जैसे जैसे समझ दे चाई, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी गल जैसे जैसे भारत वासियां नू समझ आई, उन्हां नू अपनी गुलामी दिस पई, उन्हां नू अपनी गरीबी दिस पई, उन्हां नू अपनी मजबूरी दिस पई। गरीबी दे कारण भी दिस पै, मजबूरी दे कारण भी दिस पै। इस वास्ते वो अपनियां मूल समस्यावां नाल झूझण लग पै। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते ऐसी रूह फूके, ऐसा वीर रस पैदा किया और कह दिता असी निरे हुण अणखहीण नहीं हाँ, कमजोर नहीं हाँ, असी केवल ब्राह्मण नहीं हाँ, असी केवल जप तप करने वाले भगत नहीं हाँ, कोई साड़ी माला खो के लै जाए असी खतरी भी हाँ। और साहबां ने साफ कह दिता असी विचार का जवाब विचार नाल देंदे हाँ, असी तलवार का जवाब तलवार नाल देंदे। और उन्हां दा परम एक वाक है, चूंकारज हमां हिलते दरगुजस्त अलालस्त बुरदंब शमशीर दस्त। जद शांति नाल विचार नाल जिंदगी दी कोई समस्या हल ना होवे तां तलवार चुक लेना भी धर्म है, वो भी एक महान कर्तव्य होवेगा। और जो इस कर्तव्य नूं नहीं निभाएगा अपने आप नूं गुलाम कर बैठेगा, कौम गुलाम हो जाएगी, देश गुलाम हो जाएगा। भ्रमण करके समुचे देश विच इन्हां सुतियां होईयां बिरतियां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने जगाया, जो एक एक बिरती दे जी रहे सन। चार वर्णा की वंड इसे आधार देते हुई सी, सिर की वरतों करने वाला ब्राह्मण, हत्थां की वरतों करने वाला खत्री, पेट की चिंता करने वाला वैश और भारी भरकम करने वाला शूद्र। पर जिहड़ा ये चारे ही कम करे ते चारे ही कमां दे जिसकी रुचि होवे उसनों गुरु नानक ने सिख आख्या, भई ये सिख है, इहदे अंदर चारे ही वर्ण मौजूद ने।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
3: ਹਾਂ ਜੀ।
2: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
3: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ।

0: ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਇੰਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ
1: ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ
2: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370 7-0।

किं कर थारा। दास जान देहात उबारो, हमरे सब आर्यन संगारो। प्रथम धरू भगवत को ध्याना, बाहर करूं कब ताबे दनाना। कृष्ण जथा मत चरित्रो चारो, चूक होए कब लेहो सुधारो। कबे बाच दोहारा, जो निज प्रभ मो सो कहूं जग माहे। जो ते प्रभ को त्याय है।

इस प्रभ को भयो जन्म धरा जागया है। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए कब बाच दोहारा। ठाड पयो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय पंथ चल तब जगत में जब तुम करहो सहाय दोहारा जे

मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सबै बहु भेद कह अमेक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो।